यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली अनुभवनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: शांति का महत्व. जब चारों ओर आवाज ही आवाज हो और फिर कार्य का बोझ ज्यादा हो तब तनाव पैदा होता है और मन उद्विग्न हो उठता है. इससे मन की शांति भी भंग हो जाती है और एक ही आवाज गूंजने लगता है, काश पल भर की शांति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा. और फिर शुरू हो जाती है शांति की तलाश. लेकिन शांति कोई बाजार में मिलने वाली चीज वस्तु तो नहीं जो चार पैसे देकर खरीदी जाए. ये तो आत्मा का मूल धर्म यानी स्वभाव है, आत्मा के गले का हार है, जिसे स्वाभाविक रूप से ही पाया जा सकता है. इसे बाहर ढूंढने के बजाय जब हम खुद के अंतकरण में झांकेंगे तो पाएंगे कि हम जड़ नहीं, एक चैतन्य अस्तित्व है, अपने आप में एक शांत स्वरूप आत्मा है, जिसमें विचार करने वाली चैतन्य शक्ति है मन. जब मन में अनेक प्रकार के विचार तीव्र गति से पैदा होते हैं तो मन अशांत हो जाता है और जब विचार धीरे धीरे चलने लगते हैं तब शांति का अनुभव होने लगता है. इसलिए अगर काम के ही विचार करे, व्यर्थ विचारों को त्याग दे या फिर उन्हें उचित दिशा दे तो विचार शांत होने लगते हैं. वास्तव में यही शांति है. घर परिवार और समाज में सब प्यार मोहब्बत से बिना टकराव से रहते हैं तो वो सामाजिक शांति कहलाती है. और दुनिया के देशों में जब लड़ाइयाँ बंद हो जाती है और आपस में भाईचारा कायम होता है तो वो वैश्विक शांति कहलाती है. वास्तव में शांति की जरूरत हर एक को है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली टॉनिक है तथा मानसिक समस्याओं का बेहतर से बेहतर समाधान भी. मन को शांत रहने की आदत तनाव तो घटाती है लेकिन चिंता की आग भी बुझाती है. शांति सृजनशीलता की जननी है. नए नए शोध मन को एकाग्र और शांत करने से ही संभव है. काम कोई भी हो, अगर मन शांत ना हो तो काम करना कितना कठिन हो जाता है. इसलिए सदाकाल की शांति के लिए आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन करें, सकारात्मक सोचे, कार्य का नियोजन करे और स्वयं को अनुशासित कर दे, जिससे कार्य में सफलता भी होगी और साथ साथ मन शांत भी हो जाएगा. अतः शांति को अपनाइए और तनाव को भगाइए. ऐसी हमारी आपके लिए

0: वेणु धोनी 90.4 FM KLE गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्ला
2: करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
5: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
4: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
6: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
4: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
7: CNTA is committed.
8: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
7: And we will ensure that the examination is conducted in a flawless manner.
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद ए मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
2: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु।
10: माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। There is one name you can trust, KLE Fertility Center. With science, soul and sensitivity, जिंदगी को दो नई शुरुआत KLE IVF के साथ। आज ही विजिट करें KLE Fertility Center, OPD number 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, KLE's डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।
11: KLE Pharmacy College, ಬೆಳಗಾವಿ 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

0: fuori vento e io non so di apione. Ora penso in ruolo, in vero e vento se io si fosse con i valenti.
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सदरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाई के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI

नेशनल दोस्तों आप सुन रहे हैं वन ध्वनी 90.4 FM के एलई कनेक्शन भाषा संगम में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे मंजुला चुनरी जी को। वह योगदा सत्संग सोसाइटी बोगाड़ी की मेंबर है और आज वो प्रार्थना इस विषय पर हम सभी से बात करेंगे। सुन रहे हैं वन ध्वनी 90.4 FM के एलई।

पूर्वक नमन और स्वागत और उन सभी का विशेष रूप से स्वागत करते हैं जो आज पहली बार शामिल हो रहे हैं। आज हम प्रार्थना विषय पर पूर्ण चर्चा करेंगे और आज का सभी शक्तिशाली और प्रेरणादायक विचार मेरे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी के शिक्षाओं से लिए गए हैं। वे हमेशा कहते हैं कि सफलता का अधिचेतन मनुष्य की प्रार्थनाओं तथा प्रभु की सर्वशक्ति मानता के उसके ज्ञान द्वारा ही कार्या

जाता है। परमहंस जी कहते हैं कि अपने सचेत प्रयासों को बंद न करें, न ही पूर्ण रूप से अपने प्राकृतिक योग्यताओं पर निर्भर रहना छोड़ें, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर की सहायता हमेशा मांगे। ये एक ऐसी शक्ति है जो स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले मार्ग को आपके लिए प्रकाशमान कर सकती है, यदि आप इसकी ओर उन्मुख रहे हो। यदि आप मात्र एक बार भी ईश्वर के साथ बात कर सके, उनके मौन को तोड़ सके, तो वे अक्सर आपके साथ बातें करेंगे। परंतु आरंभ में यह बहुत कठिन होता है। ईश्वर से परिचित होना इतना सुगम नहीं है, क्योंकि वे यह जानने के लिए भक्त की परीक्षा लेते हैं कि भक्त उन्हें ही चाहते हैं या किसी अन्य वस्तु को। वे आपके साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इस बात का विश्वास नहीं दिलाते कि आपके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं छिपी है। यदि आपके हृदय में केवल उनके उपहारों को पाने की आकांक्षाएं भरी पड़ी है, तो वे आपके सामने क्यों प्रकट हो? मानव का आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक है ऐहिक। उदाहरण के लिए, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम उपचार के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब कोई मानवीय सहायता किसी काम की नहीं रह जाती, तब हम दूसरी शक्ति की ओर जो हमारे शरीर, मन और आत्मा का सृष्टि करता है। ऐहिक शक्ति सीमित होती है और जब उससे काम नहीं चल सकता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। जब अत्यंत विकट भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक समस्याएं हमें निकल कर देती है, तब हमें पता चलता है कि इस स्थूल जगत में जीवन की शक्तियाँ कितनी सीमित है। हमारा प्रयास केवल आर्थिक स्तर पर निश्चिंतता एवं अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए ही नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन के अर्थ को समझने के लिए होना चाहिए। जीवन का क्या अभिप्राय है? जब भी हम पर कठिनाई आती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास की परिस्थितियों पर नजर डालते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जो भी भौतिक परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं वह सब करते हैं। परंतु जब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि हमारे मन में विचार आने लगता है, मैंने तो अब तक जो भी करके देखा वह सब व्यर्थ हुआ, अब आगे क्या करूं? तब हम उस समस्या का हाल ढूंढने के लिए गहन विचार करते हैं तो हमें उस समस्या का हल अपने अंतर में मिल जाता है। यह प्रार्थना के उत्तर का ही एक प्रकार है।

स्वरूप बनाया है। कोई भिखारी अगर किसी धनवान के दरवाजे पर जाके भीख मांगता है तो उसे केवल भीख ही मिलती है, परंतु उस घर के स्वामी का पुत्र अपने पिता से जो भी मांगे वह उसे मिलता है। इसलिए हमें भिखारियों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्रभु से उत्तर पाने की मांग दृढ़ होना चाहिए। आधे मन से की गई प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर ले, ईश्वर मुझसे अवश्य बातें करेंगे, ईश्वर मुझसे अवश्य बातें करेंगे, और यदि आप इससे अन्यथा विश्वास करने से इनकार कर दे, चाहे कितने ही वर्ष प्रभु ने आपको उत्तर न दिया हो, यदि आप उन पर विश्वास करते ही रहे तो एक दिन वे अवश्य उत्तर देंगे। जब ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते तो इसका कारण यह है कि आप में तीव्रता की कमी है। शुष्क सतही प्रार्थनाएं अर्पित करके आप परमपिता का ध्यान आकर्षित करने की आशा नहीं कर सकते। ईश्वर तक प्रार्थना द्वारा पहुंचने की एकमात्र मार्ग है प्रार्थना की दृढ़ता, नियमितता एवं गहन तीव्रता। भय, चिंता, क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों को हटाकर अपने मन को साफ करें, फिर उसे प्रेम, सेवा और आनंदमय

आनंद एक ही शांति प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। तो ईश्वर जिस प्रकार आप टूटे हुए माइक्रोफोन से संदेश प्रसारित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अशांति द्वारा

खून को ठीक करना चाहिए तथा अपने अंतर्ज्ञान की ग्रहण अशीलता में वृद्धि करना चाहिए। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से आप ईश्वर तक अपने संदेश प्रसारित कर सकते हैं एवं उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक उत्तर ऐसा है कि आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेगा, ईश्वर की ओर

हो जाने दो। ईश्वर को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके कहने से पहले ही वो आपकी आवश्यकता को जानते हैं और आपके मांगने से अधिक वो देने को तत्पर है। जब आप ध्यान करें तो उनकी ज्वलंत उपस्थिति की एकमात्र विचार में तल्लीन होकर अन्य प्रत्येक वस्तु से दूर हो जाए। इस तरह आप ग्रहणशील बनेंगे और आपके शरीर, मन एवं आत्मा में आरोग्यता प्रवाहित होगी। प्रार्थना का पहला नियम है कि ईश्वर से केवल उचित इच्छाओं की ही पूर्ति की कामना करें। दूसरा नियम यह है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह गिड़गिड़ा कर नहीं, बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते से करे। मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता है, आप और मैं एक ही है। मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता है, आप और मैं एक ही है। जब गहराई से अनुवर

इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को उचित दिशा में निर्देशित कीजिए ताकि मुझसे उचित कार्य ही हो। प्रार्थना सरासर विवेक के साथ और उत्कटता के साथ की जानी चाहिए। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर मन को पूर्ण गहराई के साथ एकाग्र कीजिए। कोई नौकरी ढूंढने से पहले या किसी करारनामे पर

लग गई है। अपनी इच्छा शक्ति के पूर्ण दिव्य बल के साथ आपको कहना चाहिए, सोना वोना कुछ नहीं, ईश्वर के साथ मेरा मिलना अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब आपको ईश्वर से उत्तर अवश्य मिलेगा। बहुत पहले एक बार हमारे परमहंस गुरुदेव देखा कि उनका एक शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा था। उसके भविष्य में होने वाले दुखद परिणामों को बात कर परमहंस जी उसे हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की, परंतु वो शिष्य नहीं माना और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने बुराई के रास्ते पर ही चलने का

और मन ही मन उसे संदेश भेजने लगे और प्रार्थना करने लगे कि उसको वापस बुलाने के लिए। शाम तक यही संदेश भेजते रहे कि भगवान ने तुमको गलत रास्ते से वापस आने के लिए ही बोल रहा है। शाम तक वह शिष्य आखिर प्रवेश द्वार पर आ ही गया। घर छोड़कर गया बिगड़ा हुआ पुत्र घर वापस आ गया। उस शिष्य ने प्रणाम करके कहा कि सारा दिन मैं जहाँ भी जाऊँ और जो भी कुछ करूँ आपकी छवि मेरे आंखों के सामने बनी रहे, यह सब कैसे हुआ?

निश्चय संसार को बदल सकता है। कितनी अद्भुत शक्ति है प्रार्थना में। तो इसीलिए गहन प्रार्थना का प्रभाव अवश्य

महाविद्यालय के एक शिक्षक ने अपनी कक्षा को चार्ल्स डार्विन का क्रम विकासना सिद्धांत मींस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। इसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया था अथवा वन मनुष्य से विकसित हुआ। इससे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया था अथवा वन मनुष्य से विकसित हुआ। एक पक्ष के लोग कहा कि मान लीजिए हम बंदरों से आए हैं, हम इतने आगे आ गए हैं, वह अच्छा है। दूसरे पक्ष के लोग बोले कि हम इस निरर्थक विचार को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वज पूछो

प्रतिनिधि मंडल के साथ ईश्वर से मिलने स्वर्ग गया। उसने ईश्वर को संबोधित किया, हे महामहिम, हम एक प्रतिवाद पंजीकृत करने आए हैं। मानवों की प्रजाति

जो यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा है कि वो प्राणी हमारे संबंधी है। हमारा अपमान किया गया है महामहिम। हमारे पास मनुष्य के रूप में

जो हो जाए ईश्वर की ओर देखे। प्रार्थना विषय पर संपूर्ण ज्ञान अर्ज करने के बाद हम आखिर में एक हृदय पूर्वक प्रार्थना करेंगे और इस विषय का निपटाय करेंगे। इसके पहले प्रार्थना के विषय पर और भी गहराई से आप जानना चाहते हैं तो श्री श्री परमहंस योगानंद जी के लिखे हुए आध्यात्मिक दैनंदिनी जहाँ है प्रकाश, दिव्य प्रेम लीला, वचनामृत और भी अनेक किताबों से आप पढ़कर जान सकते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हमें ये आशीर्वाद दे, हमारा प्रत्येक विचार आपकी प्रज्ञा से प्रेरित हो, हमारा प्रत्येक भावना आपका दिव्य प्रेम से सराबोर हो और हमारा प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा से मार्गदर्शित हो।

दोस्तों ये था आज का भाषा संगम का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ अगली मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.4 FM KLNK।

स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। आप सुन रहे हैं आरजे आयुष को ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 केएलपी कनसु। दोस्तों, जैसे खाना पीना हर चीज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी लाइफ में और सेहत के लिए सोना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई या लैक ऑफ स्लीप रही, या कभी आप देर से सोए और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए तो मूड आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है और किसी पे चिढ़ जाते हैं या उनसे गुस्सा करने लगते हैं, ये क्या है? यही तो है अधूरी नींद के लक्षण। स्लीपिंग पैटर्न रेफर्स टू रेगुलरिटी ड्यूरेशन क्वालिटी ऑफ स्लीप इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल चेंजेस, टेक्नोलॉजी और इंक्रीज स्ट्रेस के कारण डिसरप्टेड स्लीपिंग पैटर्न एक प्रीवेलेंट इश्यू बन गया। चलिए मैं आपको कई और जानकारी दूंगा, बट आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग तो हंसते रहिए और सुनते रहिए मुझे आरजे आयुष को ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KL।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी 90.4 KLE कनसू। हमारा शो भी रिलैक्स चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं थोड़े से आपके स्लीपिंग पैटर्न की, मतलब आपके सोने के तरीकों की। चलिए दोस्तों, स्लीपिंग पैटर्न्स की बात चल रही है तो मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। एडिक्वेट स्लीप या प्रॉपर स्लीप एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ बनाए रखने में और फंक्शन करने में, और ये हेल्प करते हैं आपकी मेमोरी अच्छी करने में, आपकी बॉडी को पॉजिटिवली प्रोसेस करने में, आपके इमोशन को बैलेंस करने में, उनका बैलेंस बनाने में, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहती है और एकदम क्रिएटिविटी बनाए रखती है। और अगर इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूँ तो जैसे हेल्दी स्लीप ऑल्सो इम्प्रूव योर वेरी वेरी वेरी ग्रेट इम्यून सिस्टम, एनर्जी रिस्टोरेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। तो ऐसे लोग जिनका स्लीपिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है या रेगुलर है आर मोर लाइकली टू हैव अ इनहांस्ड मूड, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है सोना हमारी लाइफ के लिए। पर अब वक्त हो गया है कुछ जबरदस्त गाने सुनाने का, तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: चूली चूली चौने का दम दम तो आया चूली तेरे लिए
1: चढ़ जाऊं सूली
0: तू ही तो मेरी जान है जान है जान है

दोस्तों, क्या बात है, आप अब तक बने हुए हैं। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, बात करते हैं कुछ कारणों की जिससे आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा हुआ रह सकता है। वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आपका स्लीपिंग पैटर्न एक कई पॉजिटिवली और नेगेटिवली चेंजेस आ सकते हैं इन कारणों की वजह से। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे इररेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक्सेसिव कैफीन, जो आप एक्सेसिव कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कॉफी वगैरह पीते रहते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेसिव कैफीन, या फिर अल्कोहल कंजप्शन एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन नेगेटिवली इंपैक्ट द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ योर्स। टेक्नोलॉजी, खासकर स्क्रीन जिससे ब्लू लाइट रेज निकलती है, जो जिसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपका फोन, आपके लैपटॉप्स का, ये भी आपका नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न और वेकिंग अप साइकिल या उठने का टाइमिंग थोड़ा सा बिगाड़ सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और भी बहुत सारे, जो आपकी स्लीपिंग साइकिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। तो दोस्तों, देर रात तक आप अपना फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज्यादा यूज ना करें और समय पर सोने की कोशिश करें। मुझे पता है आप भी एकदम ट्राई करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर ट्राई कीजिए कि जल्दी सो पाए, जिससे आपका दिन, सुबह और हर किसी की सुबह एकदम खुशनुमा निकले और आप किसी पर चिड़चिड़ ना करें। और हम गुजारेंगे लेकिन आपकी शाम थोड़ी सी खुशनुमा और सुनाएंगे आपको एकदम चटकीले गाने। सुनते रहिए हमारे साथ धोनी 90.4 KLE।

स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो वी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे आयुष को ओनली ऑन वीनू ध्वनि 90.4 केएलपी कनसू। आपकी स्लीपिंग साइकिल्स के बारे में जो आज बात चल रही है, मैं उसके बारे में थोड़ी और टिप्स आपको देता हूँ। जानते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस का आपकी हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ सकता है। स्लीप डिप्रिवेशन यानी कम नींद होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको बताता हूँ। मतलब मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपका अटेंशन थोड़ा सा लूज हो सकता है। अगर आप किसी काम में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोकस आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है। डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है। अगर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो हो सकता है अधूरी नींद के कारण वो निर्णय आप गलत ले लो। लंबे समय तक स्लीपिंग पैटर्न खराब रहने से क्रोनिक कंडीशंस रहने का भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। क्रोनिक कंडीशंस जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है सादा वजन बढ़ जाना एकदम से, ये भी कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज, हार्ट रिस्क, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देखा जाए तो डिस्टर्ब स्लीप की वजह से हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ उससे आप काफी इंप्रूव हो जाएंगे। बताएंगे आपको कुछ और स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव ऑन योर स्लीपिंग पैटर्न्स आफ्टर दिस हार्ट टचिंग सॉन्ग। सुनते रहिए मेरे साथ आरजे आयुष के साथ वेनू ध्वनि 90.4 केएलई कनसू, हमारा शो

welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen, and people of all the ages to our show. Be relaxed one more time. मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ only on Venu Dhwani 90.4 KLP कनसू पर, जो कि बेलगाम का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन है. तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करी, उन्हीं में मैं थोड़ी और स्ट्रेटजीज ऐड कर देता हूँ. आप एक कंसिस्टेंट स्लीप के लिए अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं, जो जिससे आप मेंटेन करें अपनी रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न को और आपके उठने के टाइमिंग को, इवन ऑन द वीकेंड्स. तो ऐसा ना सोचिए वीकेंड्स में मैं थोड़ा ज्यादा सो लेता हूँ. ट्राई कीजिए वो लिमिट को बरकरार रखने के लिए. क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रिचुअल, जैसे अपने आप को थोड़ी इंगेजिंग एक्टिविटीज में व्यस्त रखे. जैसे आप हो सकता है सोने से पहले रीडिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले आप हॉट वाटर शावर ले सकते हैं या वार्म शावर ले सकते हैं, जिससे बॉडी को यह एहसास हो जाएगा कि भैया चलो अभी सोने का टाइम हो गया है. एंड यू विल गेट लिटिल रिलैक्स आफ्टर दैट. लिमिट स्क्रीन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिमिट स्क्रीन टाइम जो हम लोग कभी नहीं करते, हमें कोशिश करना है कि हम ये करें कि लगभग सोने से एक घंटे पहले तक अपने फोन्स को बाय बाय बोल दीजिए, लैपटॉप्स को बाय बाय बोल दीजिए, और उन्हें कर दीजिए बंद और रख दीजिए साइड में, जिससे आपकी नींद बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी एक घंटे पहले मिनिमम. कंट्रोल द स्लीपिंग एनवायरमेंट, अपने बेडरूम में या जहां आप सोते हो वहां पर थोड़ी सी रोशनी कम कर सकते हो. ऐसी जगह पर सोए जहां पर थोड़ी सी शांति हो और कंफर्टेबल टेम्परेचर हो. ऐसा ना हो ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंडी हो, वरना इससे भी आपकी स्लीप थोड़ी सी बिगड़ सकती है. चलिए हम भी आपको अब थोड़ा सा कंफर्ट कर देते हैं और सुनाते हैं आपको ये मस्ती भरे सॉन्ग्स. कभी जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLP कनसू, आज आयुष के साथ.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आप सुन रहे हैं बेलगाम का सबसे पहला और बड़ा रेडियो स्टेशन रेनी ध्वनी 90.4 KLE कनसू। चलिए कुछ और स्ट्रेटजीज ऐड करते हुए आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले हेवी मील्स या खाना अवॉइड करते हैं, मतलब हम किसी को आदत होती है भैया रात को फोन चलाते चलाते भूख लगी तो ये खा लिया या ये खाना खा लिया। जब बहुत ही ज्यादा हेवी मील खा लिया, जूस पी लिया, जो कि आपकी सेहत के लिए भी और आपकी ब्रेन के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, तो इसे अवॉइड करो। आपकी क्वालिटी स्लीप इससे खराब हो सकती है। और स्ट्रेस को भूल जाए लॉन्ग ब्रेथ्स प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको अच्छी नींद मिलेगी। यू कैन लिसन टू, जो मैं भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, यू कैन लिसन टू पीसफुल म्यूजिक, यानी ऐसे गाने सुने जिससे आपको नींद आए, आपका माइंड और आपका प्रेशर दिमाग से एकदम छू मंतर हो जाए, तो ऐसे गाने सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों देखा जाए तो हम में से कई लोग देर रात तक जागते रहते हैं, या तो काम करते रहते हैं या फिर फोन यूज करते रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, थोड़ी नींद किसे ही आती है, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा सा जल्दी सोने के लिए। यू शुड ऑलवेज गेट मिनिमम 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। और अब वक्त हो गया है कुछ खूबसूरत गानों का, तो आप सुनते रहिए मुझे यानी आरजे आयुष को हमारे शो भी रिलैक्स में, ओनली ऑन रेनू 90.4 KLE।

हुआ वो शो भी रिलैक्स। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमने बात की कैसे आप स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वालिटी स्लीप, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को समझा। हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ में जितना काम जरूरी है उतना ही रेस्ट या नींद भी जरूरी है, जिससे आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है। ट्राई कीजिए आप आफ्टरनून में या दोपहर में थोड़ा कम सोए तो रात को नींद आपको थोड़ी अच्छी और झंडी आ जाएगी, ये ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा आपको रात को नींद नहीं आती या बार बार आपकी नींद थोड़ी सी टूटने लग जाती है, लक्षण हो सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के। अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है तो आप प्लीज मेडिकल एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसका आपको नॉलेज नहीं था। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही और जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLB कनसु आरजे आयुष के साथ। लेकिन तब तक के लिए लूंगा मैं आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।